0: ਆਈ ਹੋਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM ਤੇ
1: देवी से दुनिया में आज देखिए क्या नेपाल में आने वाली है एक और आपदा। नेपाल में आई बाढ़ में 579 पहुंचा मौत का आंकड़ा। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन लेकिन बना हुआ है एक और बाढ़ आने का खतरा। किस हाल में है लोग, तबाही के पीछे क्या है असल वजह और क्या था इस फ्लैश फ्लड का रास्ता, दिखाएंगे नेपाल से स्पेशल रिपोर्ट। कनाडा के खिलाफ छिड़े टैरिफ वॉर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ओंटारियो लेक का नाम बदलकर रखा लेक अमेरिका। क्या बद से बदतर हो रहे हैं कनाडा अमेरिका के रिश्ते, दिखाएंगे रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में कल एक सभा को एड्रेस करेंगे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, जानेंगे आखिर क्यों इतनी चर्चा में है ये प्रोग्राम। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं कीर्ति राजौरा। नेपाल में आई इस विनाशकारी बाढ़ में बचाव कार्य अब भी जारी है। नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा 579 तक पहुंच गया है। साथ ही तलाश हो रही है 1924 लोगों की। नेपाल की सरकार ने बाढ़ से लापता हुए कुछ 500 विदेशी नागरिकों की लिस्ट जारी की है जिसमें भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिक शामिल हैं। नेपाल में बचाव कर्मियों को उम्मीद है कि उन्हें अभी भी बाढ़ में फंसे लोग मिल सकते हैं। सेंट्रल नेपाल में मौजूद त्रिशूली नदी के पास के इलाके में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बीबीसी संवाददाता आजादे मोशीरी वहां पहुंची, देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट, लेकिन इसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं।
2: तबाही मचाने वाली बाढ़ के बाद सामने आई एक खौफनाक तस्वीर। गांव वाले बाढ़ से टूट चुके अपने घरों की चीजों को संजोने में लगे हैं। बुधवार को आई बाढ़ की ये तस्वीरें उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने फिल्माई जो जान बचाने के लिए भाग रहे थे। रास्ते में जो कुछ आया बाढ़ ने उसे तबाह कर दिया।
3: अभी चैलेंजेस, सबसे बड़ी चैलेंजेस तो ये है कि रास्ता, इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं।
2: This is some of the military support that... ये एयरपोर्ट पर आई वो सैन्य मदद है जिसकी मदद से उन सैकड़ों लोगों को तलाशा जाएगा जो बाढ़ की वजह से लापता हो गए हैं। और यहाँ पर वो लोग जमा हैं जिनके परिवार वाले लापता हो गए हैं और ये यहाँ पर किसी भी तरह की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग लापता हो गए हैं वो ट्रैकर्स और श्रद्धालु हैं जो कि आगे आने वाले फुल मून फेस्टिवल के लिए यहाँ आए थे। हेलीकॉप्टर्स राजधानी काठमांडू से आ जा रहे हैं और जिंदगियों को बचाने की रेस में लगे हैं। वो राहत सामग्री गिरा रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। हम पहाड़ों के ऊपर गए और बाढ़ से सबसे बुरे प्रभावित इलाके त्रिशूली के पास पहुंचे। रास्ते में हमने एम्बुलेंस भी देखी और शवों को ले जाती गाड़ियां भी। This is as far as our car could reach. हम इसे आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे की सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो रखी है। यहाँ एक बचाव कर्मी ने बताया कि यहाँ पर पानी की दीवार थी और उसके पीछे जितने भी गांव थे वो सब बह गए। आप यहाँ इस गाड़ी को देखकर तबाही के पैमाने का अंदाजा लगा सकते हैं और बचाव कर्मी यहाँ फिर से रात को काम कर रहे हैं। लेकिन खतरा टला नहीं है। ऐसी वार्निंग्स हैं कि कुछ मलबा जो नदियों में पहुंच गया है उससे और बाढ़ आ सकती है, लेकिन फिलहाल सर्वाइवर्स की तलाश जारी है। बीबीसी संवाददाता आजादे मोशी।

0: दीदी की रिपोर्ट।
1: और नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनों की तलाश में आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित ने।
2: इन्फॉर्मेशन कैसी मिल पा रही है, कितनी मिल पा रही है और आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए?
3: सर, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। वी हैव फ्रेंड्स हियर हु आर हेल्पिंग, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी कोई कन्फर्मेशन नहीं आ रही है।
2: और ऐसे ही मिसिंग इंडियंस को ढूंढने के लिए ये ग्रुप तमिलनाडु से हमारे सामने ही काठमांडू के एयरपोर्ट पर पहुंचा है। इनके मुताबिक इनके रिलेटिव्स, इनके परिजन कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए रवाना हुए थे और उस इमिग्रेशन बिल्डिंग के आसपास थे जिसकी तस्वीरें वायरल हुई थी।
4: माई मदर एंड फ्यू ऑफ माई रिलेटिव्स, टोटल ऑफ 9 पीपल।
5: मेरी माँ और मेरे कुछ परिजन, कुल मिलाकर 9 लोग कैलाश यात्रा के लिए 14 अगस्त को आए थे। हमें अभी तक नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या उन्हें नेपाल सरकार ने रेस्क्यू किया या चीन की सरकार ने, क्या वो जिंदा हैं, क्या उनका इलाज चल रहा है, कुछ नहीं पता।
6: सत्यनारायण,
7: इस यात्रा का टीम लीडर मेरा बेटा था सत्यनारायण। जब बाढ़ आई तो वो लोग चीन की इमिग्रेशन बिल्डिंग में थे। हम पूरे नेपाल में उनकी तलाश कर रहे हैं, हम हर ऑफिस में जा रहे हैं, हमने हर जगह जाकर पूछताछ की लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली।
4: Whatever happened is happened.
5: जो हो गया वो हो गया, हम वक्त को वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगर हमें ये पता लग जाए कि उनके साथ क्या हुआ था तो हमें इससे थोड़ी मदद मिलेगी।
1: और नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है, दिन भर वहाँ क्या कुछ हुआ, ये हमें थोड़ी देर पहले जुगल ने ही बताया।
2: नेपाल में आज का भी दिन बैड न्यूज से घिरा था और कहीं कहीं कुछ पॉजिटिव न्यूज भी थे। बैड न्यूज की अगर हम बात करें तो आज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि 90,000 से ज्यादा लोग नेपाल में इस आपदा से पीड़ित हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं। ये पहला इस किस्म का अनुमान है। जहां तक मृतकों की संख्या की बात करें तो इस फिगर को कंटिन्यूसली अपवर्ड रिवाइज किया जा रहा है। नेपाल सरकार ने अब जो लेटेस्ट पोजीशन दी है उसके हिसाब से लगभग 550 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है। मिसिंग लोगों की संख्या अब भी सैकड़ों में है। एक जो थ्रेट जिसकी बात आज हुई भी और फिर शाम को दोहराई गई वो ये है कि उसी साइट पर जहां फ्लैश फ्लड और मड स्लाइड्स हुए थे, उसी साइट पर एक लेक बन चुका है क्योंकि वाटर ब्लॉक हो गया है और उस लेक को पूरी तरह से भर गया है, पानी बाहर आ रहा है और उसके फटने की भी आशंका आधिकारिक तौर पर चाइनीज एम्बेसी ने नेपाल में जताई है। नेपाल और चीन दोनों ही इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये थी कुछ बैड न्यूज यानी बुरी खबरें। जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि रेस्क्यू मिशन चल रहे हैं। बहुत ही हार्ट वार्मिंग इमोशनल तस्वीरें, वीडियो सामने आ रही हैं जहां रेस्क्यूअर्स नेपाल आर्मी के लोग लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, उन्हें निकाल पा रहे हैं और अब तक 121 से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट को भी रेस्क्यू किया गया है। ये नेपाल सरकार का आधिकारिक बयान है।
1: और भारतीय टूरिस्ट से जुड़ी जानकारी पर जुगल ने क्या कुछ बताया देखिए।
2: मिसिंग इंडियंस की अगर हम बात करें तो MEA ने आज दिल्ली में ये कहा है कि 320 इंडियंस अभी भी अनकॉन्टैक्टेबल हैं। लगभग 21 इंडियंस को रेस्क्यू कर आज इंडिया लाया गया है। ऑन द ग्राउंड यहां पर रेस्क्यू एफर्ट्स तो जारी हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, रिलेटिव्स यहाँ पहुंच रहे हैं उन मिसिंग लोगों के, क्योंकि वो अब घर पर बैठकर इसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। उनके सब्र का जो बांध है वो टूट गया है और वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ आकर एम्बेसी जा रहे हैं, नेपाल सरकार के दफ्तरों को के दरवाजों को खटखटा रहे हैं और इनफैक्ट ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना आगे जा पाए जहां पर ये आपदा हुई है, उसके कितने करीब जा पाए। तो एक सेंस ऑफ डेस्परेशन है। आज हम ऐसे कई लोगों से मिले जिन्होंने कहा कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जो जरूर एक चिंता का विषय है।
1: आखिर ये बाढ़ नेपाल में आई कैसे, इसने क्या रास्ता लिया, जानिए बीबीसी वेरीफाई की इस रिपोर्ट में।
8: बीबीसी वेरीफाई ने वेरीफाइड वीडियोस और सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए फ्लैश फ्लड के रास्ते का पता लगाया। नदी असल में नेपाल और तिब्बत की सीमा पर पहाड़ों के बीच बहती है। आने वाले शुरुआती वीडियो में से एक इसी इलाके का है। सीसीटीवी फुटेज में आपदा से ठीक पहले का वो पल दिखता है। पानी का तेज बहाव इमारतों को अपनी आगोश में लेते हुए आगे बढ़ता है। करीब 20 किलोमीटर दूर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बांध तबाह हो जाता है और 10 किलोमीटर नीचे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास जान बचाने के लिए बेहद कम वक्त था। इसके और नीचे अफरा तफरी

0: माहौल था, लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और 7 किलोमीटर नीचे बाढ़ का पानी चीजों को तबाह करता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। इसका डोमिनो इफेक्ट नजर आया। पानी उफान मारते हुए त्रिशूली टाउन में घुस आता है और अचानक पुल ढह जाता है नदी के निचले हिस्से में। वेरीफाइड फुटेज में मलबा दिखाई देता है। इसमें एक पुल के हिस्से हैं जो कुछ मील पश्चिम आगे नीचे एक और पुल से टकराते हैं। एक वीडियो में मलबे से भरा बाढ़ का पानी एक और पुल से टकराते हुए दिखता है। बीबीसी संवाददाता मर्लिन थॉमस की रिपोर्ट।
1: दूसरी तरफ चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि नेपाल तिब्बत सीमा के पास फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दक्षिणी तिब्बत पर रेस्क्यू ऑपरेशन अस्थायी तौर पर बारिश की वजह से रोक दिया गया था। चीन ने चेतावनी दी है कि हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद जो झील बनी है उससे फिर से निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ सकती है। चीन की मीडिया के मुताबिक इस बाढ़ से तिब्बत में 5 लोगों की मौत हो गई है। तिब्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है ये बता रहे हैं बीजिंग में मौजूद बीबीसी संवाददाता स्टीफन
2: मैकडॉनल्ड।
3: पानी का स्तर कम हो रहा है और इस वजह से जो आर्टिफिशियल लेक वहां बनी है बचाव कर्मी वहां काम कर रहे हैं। हमने पहले सुना था कि 1,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अच्छी बात यह है कि इनमें 500 लोग पर्यटक हैं, जो ये दिखाता है कि इमरजेंसी टीम्स लोगों की मदद के लिए हिमालय के काफी अंदरूनी इलाकों में पहुंच गई हैं। तिब्बत में कोई विदेशी पत्रकार बिना परमिशन के नहीं जा सकता, इसलिए हम आधिकारिक रिपोर्ट्स पर ही भरोसा कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचने की खबर आ रही है और वो बॉर्डर क्रॉसिंग प्वाइंट जिसकी तस्वीरें हर जगह है वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। दुख इस बात का है कि वहां कई लोगों की जान चली गई।
1: अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक नेपाल में आई बाढ़ ग्लेशियर के टूटने की वजह से आई थी। बीबीसी के क्लाइमेट एडिटर जस्टिन रॉलेट इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तबाही की वजह क्या थी। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट।
4: इस तबाही के पैमाने को समझना मुश्किल है। पत्थर, कीचड़ और पानी की एक दीवार शहर में तेजी से दाखिल हो रही है। तो आखिर ये शुरू कैसे होता है? इसमें वो जगह दिख रही है जहां तबाही हुई। बाढ़ के खतरनाक पानी से प्रभावित हुए गांव घाटी में नीचे की तरफ हैं, लेकिन वहां सबूतों को जोड़ने की कोशिश कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी शुरुआत इसी पहाड़ से हुई थी। ये लांग तांग लिरुंग है और यहां से एक या शायद दो ग्लेशियर टूटकर अलग हो गए, जिससे बर्फ और चट्टानों का एवलांच आया। सैटेलाइट की क्लोजअप तस्वीरों से आपको बेहतर अंदाजा मिलेगा कि असल में क्या हुआ था। ये तस्वीर तबाही से एक दिन पहले ली गई थी और ये उसके बाद की हैं। देखिए घाटी के निचले इलाके का क्या हाल हुआ है। पहाड़ की ढलान का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया है। समस्या की एक वजह घाटी का आकार भी है। हिमालय अभी भी तेजी से ऊपर उठ रहा है, कम से कम भूवैज्ञानिक नजरिए से तो ऐसा ही है। साथ ही नदियां और भी गहरी और घाटियां खड़ी ढलान वाली बन रही हैं। इसकी वजह से ग्लेशियर पहाड़ों की ढलानों पर ऊंचाई पर ही बने रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मलबा समुद्र तल से 5 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई से गिरा था। चट्टान और बर्फ लगभग 1 किलोमीटर सीधे नीचे घाटी में आ गिरे। अब जरा उस जबरदस्त ताकत के बारे में सोचिए जो इसमें लगी होगी। असल में 2015 में आए नेपाल के खतरनाक भूकंप का सबसे बुरा असर उसी पहाड़ के दूसरी तरफ आए ऐसे ही एक एवलांच की वजह से हुआ था। ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर दोबारा अलग हो गया। लाखों टन बर्फ और चट्टान ने पूरे गांव को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इस ताजा घटना में क्लाइमेट चेंज का क्या रोल रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक वजह जरूर रही होगी।
5: क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघलेंगे और इन इलाकों में ये पानी और भी ज्यादा बढ़ेगा। इससे जमीन या चट्टान ढीली हो जाएंगी और इससे लैंडस्लाइड और मलबे के बहने की घटनाएं बढ़ेंगी। तो हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज इन इलाकों को और ज्यादा अस्थिर बना देगा और इससे ऐसी घटनाएं हो सकती हैं।
4: इसी साल बस 2 हफ्ते पहले ही हमने ऐसा लेकिन छोटा एवलांच देखा, जहां एल्प्स में बर्फ पिघलने और जमीन के नर्म होने का जिक्र किया गया। ये माउंटेनियर मोब्लॉ पर चट्टान गिरने से चपेट में आ गया। हम ये नहीं कह सकते कि नेपाल की ट्रेजेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो बर्फ जो दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों को थामे रखती है वो अब गायब होती दिख रही है। बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट।
1: अरब रुख अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं जिसके तहत लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका किया जाएगा। अमेरिका और कनाडा के बीच मौजूद इस बड़ी झील को उन्होंने अब कनाडा के साथ

0: चल रही ट्रेड वॉर का नया मुद्दा बना दिया है. देखिए बीबीसी संवाददाता टॉम बेटमन की ये रिपोर्ट.
1: हम अब इसे लेक ओंटारियो नहीं कहेंगे, हम इसे लेक अमेरिका कहेंगे. इसके लिए बस एक अच्छा पेन और थोड़ी समझदारी चाहिए, इसलिए अब लेक ओंटारियो का नाम खत्म हो गया.
2: डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वॉर अब ओवल ऑफिस के नक्शों तक पहुंच गया है. चीजों के नाम बदलने के शौकीन इन राष्ट्रपति ने अब अपने उत्तरी पड़ोसी कनाडा को उकसाया है.
1: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. लेक अमेरिका का आनंद लीजिए.
2: लेक ओंटारियो अमेरिका और कनाडा के बीच मौजूद 5 ग्रेट लेक्स में से एक है. इसका नाम यूरोपीय लोगों के यहाँ बसने से भी पहले का है. ये स्थानीय आदिवासी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है चमकता हुआ पानी. लेकिन अब इस झील का नाम बदलने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम ने दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी को और बढ़ा दिया है. दोनों के बीच टैरिफ पर हो रही बातचीत पूरी तरह टूट गई थी और इस हफ्ते कनाडा ने जवाबी कार्रवाई करने की बात कही थी.
1: कनाडा के अधिकारियों ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है.
2: इस फैसले को झील के कनाडा वाले हिस्से में समर्थन नहीं मिल रहा.
3: इसका कोई मतलब नहीं है, इससे वो किसी का भला नहीं कर रहे.
2: वहीं अमेरिका की तरफ झील के किनारे कुछ लोग राष्ट्रपति के समर्थन में भी दिखे.
4: उन्हें इस बड़ी बहस की शुरुआत करनी चाहिए कि ये बातचीत क्यों हो रही है, बातचीत में आखिर चल क्या रहा है, क्या कनाडा हमारा फायदा उठा रहा है, आखिर चल क्या रहा है.
2: अमेरिका कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. ऐसे में ये संकट कीमतों और लोगों की नौकरियों पर काफी असर डाल सकता है. बीबीसी संवाददाता टॉम बेटमैन की रिपोर्ट.
0: और आईएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत कल न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक सभा को एड्रेस करने जा रहे हैं. ये आरएसएस की स्थापना के 100 सालों के कार्यक्रम का एक हिस्सा बताया जा रहा है. लेकिन प्रोग्राम इतनी चर्चा में क्यों है, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सलीम रिजवी.
5: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के जो इवेंट है मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, उसको लेकर अमेरिका भर में खासी चर्चा है और बहुत से लोग उसके सपोर्ट में हैं तो बहुत से उसका विरोध भी कर रहे हैं. विरोध करने वालों में ये कहा जा रहा है जैसे वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स जैसी संस्थाएं हैं और इंटरफेथ जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कहती है कि भाई आरएसएस का रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स के हवाले से और माइनॉरिटीज और दूसरे गुटों के हवाले से भारत में अच्छा नहीं रहा है और हिंसा भी उनके खिलाफ की गई है. इसलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को यहां पर जगह नहीं दी जानी चाहिए अमेरिका के किसी शहर में, और न्यूयॉर्क में इसकी कोई जगह नहीं है, ये उनका कहना है. इसको लेकर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी एक स्टेटमेंट दिया. उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो इवेंट है इसका मैं समर्थन तो नहीं करता हूं और आरएसएस का भी उन्होंने विरोध किया. लेकिन अपने वक्तव्य में उन्होंने ये भी कहा कि न्यूयॉर्क के मेयर की हैसियत से उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो ये एक प्राइवेट इवेंट जो है उसको या तो रोक सकें या उसको कैंसिल कर सकें.
6: I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
5: लेकिन जो समर्थक हैं, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 5,000 लोग आएंगे सुनने मोहन भागवत को, और उनका ये कहना है कि भाई ये एक बड़ा खुला सा मंच है और सब उसमें इनवाइटेड हैं, हर तरह के मल्टी फेथ लोग भी हैं उसमें शामिल, और सब लोगों से संवाद की एक कोशिश है.
0: बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही.
7: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ. ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹਲਾਤੀ. ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2013 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਈਏ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ. ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਮਰੀ ਸੀਗੀ. ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ,

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरी मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरंग 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your office.
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
6: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillon ate Inderjot Kaur Tillon ikko chhat hai immigration ate insurance diyan sewawan ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 403-225-1111 ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਿਡ
7: ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ
6: 403-225-1111
5: ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਟੂ ਐਵਰੀ ਕੋਰਨਰ ਵਿਦ ਇਨ ਅ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੀਚ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵੌਇਸਿਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਨੈਵਰ ਬਿਫੋਰ ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ ਏਅਰਡਰੀ ਚੈਸਟਰਮੀਅਰ ਕੋਕਰੇਨ or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond. We are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca,
8: बिल्कुल।

0: 117 71 71 80 एवेन्यू।
1: तीजी लोकेशन 570 6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड।
0: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर।
1: पांचवी लोकेशन 3150 235 रेड एम्बर्स वे।
0: छेवीं लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दिया 6 लोकेशन का सांझा फोन नंबर
0: 403 835 बाय बाय।

ये पता नहीं क्यों अखीर स्टेज उन्होंने ला ले, उन्होंने सारा जोर पंजाब सरकार के खिलाफ लाया, कांग्रेस के खिलाफ भी लाया, अकालिया दे नहीं लाया। उथे अकालिया दिया एक दो तीन चार स्टेज एक स्टेज था बादल अकाली दल दी जिथे सुखबीर सिंह बादल बिक्रम मजीठिया दलजीत चीमा बलविंदर पुंदड़ ये सारे लोग सन। एक टीम एक स्टेज वो लग गई जिहड़ा मान अकाली दल है उन्होंने वालों उन्हें जाके अपना अपनी रौन रप्पा पाया हमेशा इस बारी भी एक और तेज लगी इस बारी जिहड़ी वारस पंजाब दे वल्लों सी उहदे च अमृतपाल सिंह दा पुत्तर सेम सिंह उहदे साथी इको एक एम एल ए ने कोल हैगा जिहड़ा पहिलां बादल अकाली दल वल्लों जित्तिया मनप्रीत सिंह अयाली उह वी उत्थे सी सिमर जी उस मान न टुटे हुए कोई लोग भी उत्थे सी इन्हां सारयां दे जिहड़े इस तरह मिल मिलाप सी उत्थे उन्होंने बादल अकाली दल के खिलाफ भी बहुत कल रोह की तकरीर की है। फिर इस तरह के जेडे आम आदमी पार्टी की उसकी स्टेज भी काफी तगड़ी सी, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ध्यान इन्हें पिछले सालों के भर्ती के स्कैंडल निकलते इन्हें गिनतियां दसिया इन्ने हजार लोगों को असि नौकरियां दे दी। अज तक सियासी पार्टियां चो किसी एक भी वाल किसी ने दोष लाया कि असं पैसे लिख के नौकरियां साड़ी वारी ये दोष क्यों नहीं लगे। फिर वो कहता जेडे बच्चे इतने टैसटा चो रह भी गए असि इना ट्रांसपेरेंट रखा कि किसी भी बच्चे ने यह पटीशन नहीं की भर्ती दोबारा करो जो सारी खोल के रीचैक किया जाए क्योंकि हेराफेरी हुई है पैसों के लेन देन क्या ये एक भी थान से पैसों के लेन देन की रिपोर्ट क्यों नहीं आई थी इन्होंने क्यों वो इस वे कई मामलों से दूसरा तो अगर निकलता जापता इस करके भी कल उन्हें बीबिया वास्ते जी हर महीने वाली मदद की रिलीफ की रकम है वो एन रखड़ी के मौके जो रिलीज की बीबिया हजार हजार रुपया जिड़िया शेड्यूल कास्ट बीबिया पंद्रह पंद्रह सौ मिल जाए ये असर तो पैदा ही अप्रो का उस वे दोपहर तक सारे थावान से सोशल मीडिया से बधाई मिलने लग पी कि देखो दिन मिल गई तो मान सरकार को मिलने लग पी। हालांकि एक दिन पहला मुलाजमान टकराव हो गया टैक्स उस टकराव वाली गल भी इस वाले च हो गई किसी ने पता नहीं की हुआ एको दिन का टकराव थी तो अगले दिन तक वो गल किसी याद नहीं ये गल उन्हें फिर उभार दिया उन्हें कांग्रेस उत्ते अटैक किया क्योंकि कांग्रेस कल रैली की है अद्धी कांग्रेस ने वो अद्धी इस तरह कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख लीडर से स्टेज के उत्ते भी उसे दी फोटो फोटो उन्होंने अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग से दूजे भी लाइया पर छोटिया छोटिया अपनी फोटो उन्हें राहुल गांधी सोनिया गांधी बराबर वड्डी लाई उन्हें लाई जा स्टेज बनाने लाई उस स्टेज के उत्ते तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा भी चला गया सुखविंदर रंधावा भी चला गया कई होर लोग भी चले गए वो सारा ग्रुप उत्थे खड़ा सी उन्होंने अपनी रैली काफी तगड़ी की हाजरी वालों कसर नहीं सी मैं सारिया फोटो तो वीडियो वेखिया ने आम आदमी पार्टी की रैली सब तो वड्डी रैली सी जे दूसरी रैली वड्डी असीं गिणदे आ वो वारस पंजाब दे जिहड़े उन्हां दी सी तीसरे नंबर ते चरणजीत सिंह चन्नी वाली सी जिहड़ा ये बादल अकाली दल के सिमर जी उत्थे मान वाले इन्हां दीआं रैलियां काफी भरवीआं सी भाजपा वाला कल पहली बार रैली कीती रैली तां ना तगड़ी सी प्रभावशाली सी पर बाकी दे मुकाबले दी नहीं कही जा सकदी उन्होंने हौली सी।

0: बार जरूर गल बात करो। जग्गी ढिल्लों का फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
1: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
4: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
3: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
5: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790। स्टार मूविंग।